0: इटारिया फ्याममा यो मेलोडी नाइट।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

0: बसंत को माया लुहावा चलदा, 16-17 को उमेर मा जोबन को लहर चलदा, कसे कसे ले तीतो मीठो व्याधर त दिए के होलन है ना? हो ती आधरु नहीं हुन कुसुमे रुमान छादायो
1: तकाने सामी सिते।